0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

दफतन इधर से, ये जो दफतन इधर से गुल मोहर की शाख को हटाकर उभरा है उफक पे जान मेरा, इस जान का हुस्न तो वही है।

दफतन इधर से, ये जो दफतन इधर से गुल मोहर की शाख को हटाकर उभरा है उफक पे चांद मेरा, इस चांद का हुस्न तो

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: This one's dedicated to my boy B. Brian Messi.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: पिंडा विचो पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तेरे प्यार च उम्र तबाह की थी, बेदर्दा आज तू भूल नहीं। इथों वध के कैसे रोया है, झूठे दावे करण ते तुल नहीं। मैनू एक पल विच जिन्हें दर्द मिले, तेरे कोल इन्ने दुखड़े कुल नहीं। तेरा सारी उम्र दा रो रहना, मेरे एक अथरू दा मुल नहीं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।